देखा रा यांग साजे शेन था जाओ वारा निम छरनो था जिंगार लंगलिंग थु योशी ये सोचा मांबु देखा रा ने जासी रंजुन छुनी ला जिसों शुदी 看个坑地硬，错心眼。

0: ला मिन्छु की गुरिम नाम खप क्या मे गुबे था नहुं ला पुक्तो मे बे थोने शो गुन कांग या मे बा या ने सांग थो
1: गुन थों या मे ने रि था थे वे रं सिंग की या मे ने ला पें बु यु गुरिम योंग ला शेप शु यु बे शेप शु बु छे ला गे लिन यु खप आंग चा ले वो गे गु जि थु सुम गु गु गु छु सुम सा ने ला सिंग यांग चेन लाम फु कांग मेन कांग की ने दे बु सर बे खा जि छिं बि थांग नान्ये दि थांग दि ने शि ग जि ཁེ དེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: ये लुंग दिए भी ये नोस ये लोटी के नमरान लुंग दिए दिन यूं है इन्हें मुरांगे ना सिंगे शेबे मासे चांसे बासे स्टार्ट है सुआ
1: ना ता अचानक जो जो भी दिए शोने चांसे ला गिरे हो मरता वहाँ के दिए सिंगे ने ये खाते चीज़ मासे
2: चौड़ियां काबो चौड़ियां काबो तो काबे चौड़ियां काबो यहाँ चौड़ियां काबो चाहिए।